0: हो घर खर्चासाठी पैसे द्या.
1: हे घे, किराण्याचे 15,000, भाज्यांचे 2,000
0: आणि लाइट बिलाचे.
1: आता 0 रुपये कसे देऊ.
0: अरे हो हो, विसरलेच मी. आता सोलर पॅनल लावले आहेत ना, मग जे 4,000 वाचले त्यातून शॉपिंग करूया.
1: हो हो, नक्की. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in.
2: हर घर सूर्य घर.
3: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून. टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4. रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता. ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. ऐकत रहा, आनंदी रहा.
4: नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी आपलं शिक्षण तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पूर्ण केलेलं असतं आणि जीवनाच्या सध्या ते एका अशा टप्प्यावर असतात की त्यांचा हा यशाचा प्रवास आणि त्यांनी गाठलेली ध्येयाची उंची हे पाहूनच आपल्याला प्रेरणा मिळते. त्यांचा जो हा यशाचा जीवनाचा प्रवास आहे त्याच्यातून आपल्याला खूप सारे असे मार्गदर्शक तत्व मिळतात ज्या माध्यमातून आपण आपलाही जीवन प्रवास पुढे घेऊन जातो किंवा आपल्याला आपल्या स्वतःचं यश अर्जित करण्यासाठी याचा फायदा होतो. याचप्रमाणे आज आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेला आहे श्री दीपक जैन यांना. ते मूळता राहणारे बरोट, जे की दिल्लीच्या जवळ आहे, त्या ठिकाणचे आहेत आणि त्यांनी 1996 साली प्रोडक्शन या ब्रँचमधून त्यांचं अभियांत्रिकीचं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे. सध्या ते दिल्लीमध्ये स्वतःची APS हायड्रो प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून कंपनी चालवतात आणि आज त्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला भेट दिलेली आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत त्यांचा यशाचा प्रवास आणि त्यांच्या जीवनाचा प्रवास.
5: थँक्यू
4: दीपक जी. जैसे मैंने अभी एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन करवा के दिया कि आप यहाँ पे 1996 के पास आउट है स्टूडेंट
5: जी जी,
4: और अभी दिल्ली में आपकी खुद की कंपनी भी चला रहे हो
5: जी जी.
4: तो हमारे सबके लिए सही तो दिल्ली देखा जाए तो राजधानी का प्लेस है और बहुत बड़ा आकर्षण भी है कि दिल्ली में लोग दिल वाले रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे कि हम अपना जीवन बहुत आगे लेके जा सकते. लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 1996 के बाद आप पहली बार आ रहे हो या इसके पहले भी आए?
5: ये मेरी 1996 के बाद पहली विजिट है. प्रोग्राम तो हमने 2001 में बनाया, 2007 में भी बनाया, पर यह कि प्रोग्राम बन तो रहा था. अच्छा. पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था.
4: अच्छा.
5: ये अब हमारी एलुमनी मीट थी 11 फरवरी को
4: जी.
5: उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि अपने कॉलेज में विजिट करनी है
4: जी.
5: तो प्रोग्राम हमने 25 फरवरी को फाइनल किया
4: जी. आज आपके साथ कौन कौन आए?
5: आज मैं वैसे तो बेसिकली दिल्ली से तो अकेला हूँ, पर मेरे बैचमेट हैं, जयेश कदम है, प्रशांत जैन है.
4: अच्छा, अच्छा.
5: और मेरी टीम है, मतलब दिगंबर दाते सर हो गए,
4: अच्छा, अच्छा, अच्छा.
5: गलके सर हो गए और कोडले सर हो गए, सब ये मेरे साथ ही जुड़े हुए मतलब.
4: अच्छा, अच्छा. दीपक जी, जैसे कि आप कह रहे हो कि 1996 के बाद आप पहली बार यहाँ पे तेरणा इंजीनियर कॉलेज पे आ रहे हो
5: जी.
4: तो लगभग 27 इयर्स का बीच में टाइम पीरियड निकल के गया.
5: बिल्कुल बिल्कुल.
4: तो आप जैसे यहाँ पे आपने कदम रखा तो आपको क्या फीलिंग थी पहले जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने कदम रखा?
5: फीलिंग तो ये थी कि हम अपनी सारी पुरानी मेमोरी हमने रिवाइज की है.
4: अच्छा.
5: कि भाई हम किस तरह हमने यहाँ पे सर्वाइव, उस टाइम बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन थी स्कूल की, कॉलेज
4: अच्छा,
5: की
4: अच्छा.
5: पर अब यह कि काफी इन्होंने पहले से बेहतर किया है. हम तो जब हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में जाते थे तो पूरा का पूरा नीचे घाटी वेव करके जाते थे. अब वहाँ पे पुल भी बन गया है, काफी अच्छी इम्प्लीमेंट हुई है. गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पे अच्छा वो कर दिया इन्होंने. तो पर यह है कि पहले से बेहतर है,
4: पहले से बेहतर है. टर्फ ग्राउंड भी हो गया है.
5: हाँ,
4: साथ में रेडियो तेरना भी आ गया.
5: रेडियो तेरना भी आ गया. कांग्रेचुलेशन फॉर दिस.
4: थैंक यू सर. तो ये जैसे कि आप 1996 में यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए थे, आप 1996 में पास आउट हो गए, यानी उसके पहले 4 साल पहले, यानी 1992 की बात होगी
5: जी.
4: तो आपको कैसे पता चला कि तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज एक है बेहतर कॉलेज है, या आपको दिल्ली से लेके डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन के लिए आना पड़ेगा?
5: एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे विक्रम गुप्ता जी
4: जी,
5: वे बेसिकली सीतापुर से वो बिलोंग करते थे, मतलब हमारी बुआ जी के बेटे राजीव जैन जी के फ्रेंड थे वे
4: जी।
5: तो उन्होंने ही हमें गाइड किया कि भाई ये कॉलेज है, यहाँ पे अच्छी फैकल्टी है और आप यहाँ से जुड़िए।
4: अच्छा।
5: तो उनके ही कहने पे हम यहाँ पे तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े और हमने अच्छा यहाँ पे बूस्टअप लिया।
4: अच्छा, तो जैसे आप 1992 में यहाँ पे आए थे और आपको जब पहली बार यहाँ पे देखे, क्योंकि आप तो आपकी तो पढ़ाई पूरी दिल्ली में हो गई थी, आप दिल्ली में रहते थे, तो यहाँ उस्मानाबाद उस वक्त का उस्मान आज का धाराशिव है लेकिन उस वक्त उस्मान था, तो आपको यहाँ पे आने के बाद कैसे फील हो गया? पहले
5: तो
4: फर्स्ट इम्प्रेशन,
5: पहले तो बहुत होम सिकनेस महसूस हुई क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज भी अलग थी, रहन सहन भी अलग था। तो पर यह है कि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया कि भाई किस तरह से इस क्लाइमेट में हम एडजस्ट हो, तो उनके सहयोग से हमने अपने आप को चेंज करके इस परिस्थिति में ढाला।
4: अच्छा, तो ये जो आपका 4 साल का एकेडमिक्स था वो कैसे था यहाँ पे? आपको यहाँ की पढ़ाई होगी तो ये आपने कैसे यहाँ पे पूरी की फिर?
5: मतलब हमारी जो फैकल्टी थी उन्होंने हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है, उनके गाइडेंस में हमने अपने 4 साल बड़े अच्छे निकाले। उस टाइम एसवी पाटिल सर थे।
4: अच्छा।
5: कुलकर्णी सर थे, सुरवासे सर थे, तो इन लोगों का हमें बड़ा अच्छा सहयोग मिला। तो इनके गाइडेंस में हमने अपने अच्छे कैरियर को आगे बढ़ाया।
4: अच्छा अच्छा, तो जैसे दीपक जैन जी आप 1996 में पास आउट होने के बाद फिर आपने आगे के फ्यूचर के प्लानिंग क्या थी आपकी और कैसे आपने शुरुआत की पढ़ाई के बाद?
5: शुरुआत ये है कि बेसिकली तो हम टीचिंग लाइन में गए पहले
4: जी।
5: हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 3-4 साल पढ़ाया
4: दिल्ली में।
5: हम दिल्ली में अपने बड़ौत में।
4: बड़ौत में, अच्छा ओके। हाँ।
5: तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पॉलिसी ला रखी थी, उन्होंने वैकेंसी नहीं दी। तो फिर हमने उस फील्ड को छोड़ दिया।
4: हाँ, हाँ।
5: फिर उसके बाद अपनी लाइन में घुसे।
4: अच्छा।
5: पहले हमने धीरे धीरे रेलवे के प्रोजेक्ट लिए।
4: अच्छा।
5: फिर उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करा, फिर हमें एनएच में घुस गया।
4: ये आपकी पुछते ही नहीं ये ऐसा कुछ?
5: ना ना ना नहीं, ये हमने बिल्कुल नई लाइन चुनी थी।
4: अच्छा अच्छा,
5: ये है कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले।
4: अच्छा अच्छा, तो ये आपकी जो कंपनी एपीएस हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में जानकारी दीजिए कि आप ये कंपनी आपकी कैसी है, आप इसको कैसे चलाते हो?
5: एक्चुअली हम लोग जो ये कंपनी रन करते हैं इसमें हम बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और एनएच ये नेशनल हाईवे बनाते हैं
4: जी।
5: हमारी 9 साइट तो ऑल ओवर इंडिया चल रही है जी, और 3-4 प्रोजेक्ट हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं। हमारे ऑफिस में 47 तो स्टाफ हेड ऑफिस में है।
4: अच्छा।
5: 5000 स्टाफ साइट पे है।
4: अच्छा अच्छा,
5: तो ये कि अपना सबके सहयोग से ठीक
4: अच्छा,
5: चल रहा है।
4: अच्छा, तो जैसे कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में आपकी पढ़ाई करते थे, उसके बाद में आपने पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाने का काम किया, तो ऐसा कुछ आपका एम था खुद की कंपनी चलाने का या कुछ ऐसा आपने डिसाइड?
5: बिल्कुल सर, शुरू से एम था कि अपना
4: मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारा ये जो आपका इंटरव्यू है सिर्फ स्टूडेंट ही सुनेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट भी सुनेंगे क्योंकि पूरे
5: एम तो सर देखो हमारे बेसिकली जो मेन संजीव बालियान जी हैं, ललित मोहन जी हैं, देवेंद्र जी हैं, इन लोगों ने शुरुआत की थी
4: जी।
5: फिर मैं तो धीरे धीरे इनके साथ जुड़ा हूँ, इन लोगों के साथ सहयोग करके धीरे धीरे इस कंपनी को रन किया।
4: मैं ये इसलिए पूछना चाहता था क्योंकि जो पढ़ाई करते स्टूडेंट जो अब स्कूलिंग से लेके कॉलेज में आते हैं, फिर यहाँ का हमारा तो एक ऐसा माहौल है कि पूरी पढ़ाई होने के बाद बच्चे सोचते हैं कुछ कुछ कि आगे लाइफ में क्या करना है, तो आप इसके बारे में क्या ऐसा गाइडेंस देना चाहेंगे कि हमारा एम और हमारा विजन कैसे क्लियर रहना चाहिए?
5: संजय, क्या होता है, आपको एम और विजन में डिफरेंस लाना पड़ेगा।
4: अच्छा।
5: एम होता है कि भाई आपने सोच लिया मुझे ये करना है
4: जी।
5: विजन ये होता है कि आप पहले से सोच के चल रहे हो कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूंगा।
4: फील्ड में आगे बढ़ना है, ठीक है।
5: तो हमने दोनों को मिक्सअप नहीं करा।
4: अच्छा।
5: हमने अपना गोल अलग रखा हमें कि भाई धीरे धीरे इस फील्ड को आगे बढ़ाएंगे।
4: अच्छा।
5: तो
4: अच्छा।
5: जो अपना गोल पे कंसंट्रेट करेगा वो धीरे धीरे उस फील्ड में निकल जाएगा।
4: इसको कब सोचना चाहिए ये मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आप 1996 में तो आपने पढ़ाई की थी लेकिन आज
5: समझो क्या होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सीधे ही आप ये एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाए।
4: अच्छा।
5: शुरू में आप फील्ड में आप अपना सर्विस ज्वाइन कीजिए जो आप जिस चीज में इंटरेस्ट है, उससे आपको मार्केट एक्सपोजर बहुत मिलता है
4: जी।
5: जब आपको मार्केट एक्सपोजर मार्केट का पता चल जाएगा फिर धीरे धीरे आप उस फील्ड में घुसेंगे।
4: अच्छा अच्छा, यानी डायरेक्टली सिर्फ कंपनी
5: डायरेक्टली कभी भी कंपनी वो नहीं करनी चाहिए रन, उसमें आपको नुकसान बड़ा हो सकता है क्योंकि आज का फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो आपको पहले मार्केट एक्सपोजर के लिए फील्ड में जॉब जरूर करनी चाहिए।
4: अच्छा अच्छा, जिससे आपको एक्सपीरियंस आ जाए उस चीज
5: उससे, उसके बाद आप आगे बढ़िए।
4: अच्छा अच्छा, तो जब आप दिल्ली में आपने कंपनी स्टार्ट की थी आपकी, तो ये कंपनी स्टार्ट करने में आपको पहले क्या दिक्कतें आ गई? आज तो इसका बहुत बड़ा स्वरूप दिखता है, लेकिन आपको पहले पहले क्या दिक्कतें आ गई और आपने उसको कैसे फेस किया?
5: दिक्कतें तो देखो हर लाइन में आती है, सो जो है ये है कि भाई आपको दिक्कतों को साइड में रख के भाई उन दिक्कतों को भी आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप दिक्कतें फेस नहीं करोगे, उसका तरीका नहीं निकालोगे भाई इस चीज से कैसे हम आगे बढ़ना है, तो आगे आप अपने गोल को नहीं अचीव कर सकते।
4: बराबर है।
5: तो इसलिए दिक्कतें, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए दिक्कतें आएंगी, वो उसका दिक्कतों का स्वरूप अलग अलग होता है। अब वो स्वरूप मैं आपको कैसे डिफाइन करूं, वो
4: ठीक है, लेकिन दिक्कतें तो आती है इस बात,
5: हर फील्ड में आती है। वो तो ये है कि भाई आपको फेस करना पड़ेगा उन दिक्कतों को, किस तरह आप दूर करना है वो आपकी ये है कि भाई किस तरह आपने अपना विजन देखा है, किस तरह आपने अपना गोल देखा है, वो ही आपको उस चीज को दूर करने का तरीका बताता है।
4: अच्छा, तो जैसे कि ये दिक्कतें दूर करने के लिए या कोई भी चीज जैसे आती है तो उसको फेसिंग करने के लिए जो तैयारी होती है वो स्कूलिंग के और कॉलेज के पीरियड में होती है, जो भी हमको एजुकेशन मिलता है। तो आपका जो स्कूलिंग का एजुकेशन था वो कैसा था, कॉलेज में आने के बाद भी आपका एजुकेशन कैसा रहा, और आपको क्या ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जिसके ऊपर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं?
5: एक्चुअली क्या होता है, सिंजो हम जो पढ़े हुए हैं यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं
4: जी,
5: हमारा बेसिक जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत ही साउंड था।
4: अच्छा, अच्छा,
5: हम लोग जब यहाँ से यूपी से महाराष्ट्र में आए थोड़ा हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तो हल्का था, पर हम लोग बेसिक अब अपना बहुत क्लियर करके आए थे।
4: अच्छा,
5: तो हमें यहाँ पे कोई वैसी दिक्कत नहीं आई। एटमोसफेयर में ढलने में, क्लाइमेट एब्जॉर्ब वो करने में हमें थोड़ा टाइम तो लगा है, पर ये है कि 6 महीने के अंदर हमने उस चीज को अपने आप अडॉप्ट कर लिया था।
4: अच्छा अच्छा,
5: तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उस एनवायरनमेंट से निकल के इस एनवायरनमेंट में आओ, वो तो बच्चे की है कि भाई माइंड पावर कैसी है, उससे अपने ऊपर विल पावर कितनी मजबूत है। जिसकी विल पावर मजबूत होगी वो उस चीज को फेस कर लेगा।
4: अच्छा अच्छा, श्रोत्या आणि मित्रांनो, आपण जी चर्चा करत आहोत श्री दीपक जैन यांच्याशी, ते मूळतः राहणारे बरोट येथील आहेत, दिल्लीच्या जवळचा आहे, कदाचित माझ्या उच्चारामध्ये कमी जास्त असेल, दीपक जैन सरांच्या माध्यमातून आपल्याला ते समजून येत असेल, आणि ते आता सध्या दिल्लीमध्ये APS हायड्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या नावानं कंपनी चालवतात। जैसे दीपक जी, आपने 1996 में यहां से पास आउट किया था, उसके बाद में कुछ दिन आपने स्टूडेंट को पढ़ाया भी है, और अब आप खुद की कंपनी भी चला रहे हो, ताकि आपके एम्प्लॉयज में बहुत सारे इंजीनियर भी हो सकते हैं। ओवरऑल ये सबको अगर आप समराइज करेंगे, देखेंगे इसको, तो आप क्या कहना चाहोगे कि उस वक्त की पढ़ाई, उस वक्त का जो भी सिनेरियो था इंजीनियरिंग का, आज का इंजीनियरिंग का सिनेरियो कैसा है, ताकि जो भी इंजीनियरिंग में अभी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट उनके लिए कुछ तो गाइडलाइंस मिल सके।
5: देखो सिनेरियो तो उस टाइम और इस टाइम में ज्यादा फर्क नहीं है, पर ये है कि जो स्टूडेंट है उन्हें अपना विजन क्लियर चलना पड़े, अपना बेसिक जितना वे लोग अपनी मेहनत बेसिक्स पे करेंगे वो उस चीज को ये है कि अपना फ्यूचर उतना ही अच्छा निकालेंगे। तो अपना बेसिक मजबूत करेंगे चलें स्टूडेंट, मेरी तो यही तमन्ना है, बेसिक अच्छा होना चाहिए,
4: बेसिक अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये जो स्टूडेंट है अभी के, क्योंकि उनके अंदर एक और एक चेंज आ गया है जो कि आपको भी शायद दिखाई देता है हर रोज के लिए, कि जैसे कि आप 1996 के दौरान जब पढ़ाई करते थे तो आपके पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा नहीं थी जैसे कि मोबाइल हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, लेकिन अभी आजकल बहुत ये हाथ में है, तो उसका यूज और मिसयूज ये दोनों भी हो जाता है। तो आप आज के जनरेशन को क्या कहना चाहोगे कि टेक्नोलॉजी के बारे में हमने कैसे साउंड रहना चाहिए?
5: देखो टेक्नोलॉजी के मामले में स्टूडेंट को सीधे ही पॉजिटिव व्यू चीज लेना पड़ेगा। जो स्टूडेंट नेगेटिव सोच के चलेगा वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट अपना गोल और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएगा वो अपना गोल भी परफॉर्म करेगा और अपना फ्यूचर भी बेहतर लाएगा।
4: अच्छा, तो ये जो आजकल के स्टूडेंट है जिनके बारे में आप कह रहे हो कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में साउंड रहना चाहिए, उसका अच्छे तरीके से यूज करना,
5: पॉजिटिविटी होनी चाहिए,
4: पॉजिटिव होने चाहिए। तो जैसे कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली में कौन है, और जब यहाँ पे आप उस में पढ़ाई के लिए आए थे उस दौर में, तो आपके फैमिली का क्या कहना था, आपके पिताजी होंगे माताजी होंगे तो उनका क्या कहना था, और आज जब आपकी कुछ खुद फैमिली है तो आप आपके बच्चों को क्या कहते हो?
5: देखिए, मेरे जो दादाजी थे वे IIT रुड़की से पास आउट थे।
4: अरे वो
5: अबे एज ए डिविजनल इंजीनियर रिटायर हुए हैं।
4: क्या बात है।
5: हाँ। मेरे चाचा जी भी IIT रुड़की से टॉपर है।
4: अरे वाह। हाँ।
5: तो वे महिंद्रा इन महिंद्रा में जनरल सेल्स मैनेजर रहे, फिर 2007 में उन्होंने अपनी कंपनी रन करनी शुरू करी थी।
4: अच्छा, अच्छा।
5: नमो कार इलेक्ट्रिकल्स के नाम से उनकी कंपनी है।
4: अच्छा।
5: तो हम तो उनसे ही इंस्पायर हुए।
4: अच्छा।
5: अपने बड़ों से अच्छी शिक्षा लेके आदमी को बढ़ना चाहिए। देखो, हम अपने बच्चों से यही कहेंगे कि जो हमने अचीव किया है आप भी कोशिश कीजिएगा उस एम तक पहुंचे।
4: जी जी।
5: तो हम तो उनके लिए गुड लक बोलेंगे, फ्यूचर आपका अच्छा है, आप पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़िए।
4: अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लाना चाहूंगा फिर से एक बार। आपने 1992 में यहाँ पे एडमिशन लिया था
5: जी,
4: तो वहाँ पे आप काफी ऐसे ब्राइट स्टूडेंट थे, शाय स्टूडेंट थे, या कुछ मौज मजा मस्ती भी करते थे?
5: हम तो मौज मजा मस्ती वाले थे।
4: अच्छा, अच्छा।
5: हम तो मौज मजा मस्ती वाले थे।
4: अच्छा। हाँ।
5: खूब 4 साल हमने बड़े एंजॉय किया इस लाइफ को।
4: अच्छा।
5: स्टूडेंट को मैं ये सलाह दूंगा जिसने हॉस्टल लाइफ नहीं जी,
4: हाँ,
5: उसने तो अपना कुछ नहीं जिया।
4: अच्छा।
5: हॉस्टल लाइफ, जब आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करो।
4: अच्छा, तो क्या क्या था उस जमाने का आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत ताजा हो रहा है आपके दिमाग में कि नहीं मैं उस वक्त ये करता था या कुछ ऐसा?
5: भाई देखो, ज्यादा तो उस टाइम मौके थे नहीं।
4: हाँ।
5: पर हम अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते थे।
4: अच्छा। हाँ।
5: हमारे लिए यहाँ पे कि वो था सिद्धार्थ होटल।
4: अच्छा।
5: जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता था या जो भी हम अचीवमेंट करते थे वो सेलिब्रेट हमारा वही होता था।
4: अच्छा, तो फिल्में देखना होगा या बाकी कुछ चीजें होंगी?
5: नहीं,
4: तो
5: फिल्में भी देखी हमने, क्रिकेट बहुत खेला है।
4: अच्छा।
5: चेस बहुत खेलते थे।
4: अच्छा।
5: बैडमिंटन का मैं अच्छा प्लेयर था।
4: अच्छा।
5: एनके जोशी हमारे और थे इंस्ट्रक्टर।
4: अच्छा।
5: और थोड़ा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था।
4: अच्छा,
5: तो अच्छा अच्छा जीवन रहा है।
4: अच्छा, आपके साथ को उस वक्त पढ़ाई के लिए यहाँ पे एडमिशन लेके उस टाइम इंजीनियरिंग में आपके साथ कहाँ कहाँ के स्टूडेंट थे?
5: बेसिकली हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आते थे दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से।
4: अच्छा।
5: हिमाचल से। उस टाइम लोकल स्टूडेंट्स कम थे।
4: अच्छा।
5: अदर स्टेट के ज्यादा थे।
4: अच्छा।
5: तो क्योंकि उन दिनों हमारी तरफ मतलब 2000 से पहले वहाँ पे इंजीनियरिंग और MBBS कॉलेज नहीं थे।
4: अच्छा।
5: तो जितना भी स्टूडेंट को ये टेक्निकल नॉलेज या ये MBBS में जाना होता तो महाराष्ट्र कर्नाटक ही प्रेफर करता था।
4: अच्छा, अच्छा।
5: तो ये है कि भाई यहाँ एनवायरनमेंट अलग है, पर यहाँ पे ये है कि भाई एनवायरनमेंट अलग होने के बाद भी जो हमारे सीनियर्स थे या हमारे प्रोफेसर थे वे बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो उनके सहयोग से आदमी अपनी लाइफ सर्वाइव कर जाता था।
4: अच्छा, अच्छा। दीपक जैन जी, मैं तो सही बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप 5000 एम्प्लॉय की एक कंपनी रन करते हो।
5: जी जी।
4: तो ये कैसे फीलिंग होता है कि, तो आपकी एक परंपरा थी कि आपके घर में IIT से भी कुछ लोग होके मतलब उन्होंने कंपनी रन की थी, लेकिन फिर भी आप एक उस्मान जैसे एक सिटी में पढ़ के आपने आज दिल्ली जैसे राजधानी में, देश के राजधानी में एक 5000 एम्प्लॉय रहने वाली कंपनी चला रहे हो, तो आपको क्या फील होता है कि एक कंपनी ऐसे चलाना? और
5: देखो सुजय, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि कंपनी चलाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आदमी को अपनी जमीन की जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए।
4: अच्छा।
5: जो आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा उसपे वो हमेशा ही अचीवमेंट निकालेगा।
4: अच्छा।
5: जो आदमी अपनी जड़ों को खो देता है तो वो सब कुछ खो देता है।
4: अच्छा। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था आपसे क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे तेरना एल्युमिनियस के इंटरव्यूज किए पिछले साल में, लगभग 350 एल्युमिनियस के मैंने इंटरव्यूज किए हैं, जिसके अंदर 1986 के बैच के भी कुछ स्टूडेंट थे और अभी रिसेंटली भी थे, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो कहीं अब्रॉड में भी काम करते हैं, कहीं कंपनी में अच्छे अच्छे अहदे पे काम करते हैं, लेकिन खुद की कंपनी चलाने वाले एक ही दो थे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जो इतने सारे एम्प्लॉय के साथ चलाने वाले वैसे तो आप ही।
5: हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत हमारे जो बैचमेट थे संजीव जी या ललित जी ने करी।
4: अच्छा।
5: मैं तो बाद में उन लोगों का साथ जुड़ने के लिए जुड़ा हूँ।
4: अच्छा।
5: मेन मैं उन्हें थैंकफुल कहूंगा, दोनों ने बड़ा अच्छा, देवेंद्र संजीव ने बड़ा अच्छा सेटअप किया।
4: आपके बैचमेट थे।
5: हाँ। अच्छा। इन लोगों ने बड़ा अच्छा सेटअप तैयार करा है।
4: अच्छा,
5: ये है कि भाई अब हम प्राउड फील करते हैं कि हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि भाई हम अप कह सकते हैं हम सीओ उस्मानाबाद से पढ़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा,
5: तो अच्छा महसूस होता है।
4: अच्छा महसूस होता है। अच्छा, फाइनल वर्ड्स ऐसा क्या कहना चाहोगे कि एक सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए क्या करना चाहिए, किसी ने भी आमतौर पर पढ़ाई करने वाले ही स्टूडेंट नहीं, सिर्फ
5: पढ़ना और स्टडी में ज्यादा इन्वॉल्व होना कोई वो एम नहीं होना, आपको अपने आप में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी
4: जी।
5: जो मतलब आपका थॉट है और जो गोल है वो दोनों एक ही उसमें लाइन अप होना चाहिए। आप अगर उस चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत आगे
4: बढ़ सकते हैं। अच्छा, और फैमिली वैल्यूज को आप कितना
5: वो सबसे प्रायोरिटी है। अच्छा, फैमिली वैल्यू सबसे ज्यादा प्रायोरिटी।
4: तो आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है?
5: मेरी मिसेज है
4: जी,
5: मेरे दो बेटे हैं।
4: अच्छा,
5: और मम्मी पापा हैं, दोनों मास्टर डिग्री कर रहे हैं।
4: मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में?
5: नहीं नहीं।
4: अच्छा, ऐसे
5: वे बीबीए करने के बाद एक तो एलएलबी कर रहा है,
4: ओके,
5: एक बीबीए करने के बाद एमबीए कर रहा है।
4: तो आपने उनको नहीं कहा कि एक इंजीनियरिंग की लेजेंडरी है आपके पीछे तो आगे चलिए वही लेके?
5: सुजय, आजकल बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकता, वो बच्चों का एम और गोल बिल्कुल क्लियर है।
4: अच्छा,
5: जो उस फील्ड में जाना चाहते हम लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं।
4: अच्छा,
5: इंजीनियरिंग एक बड़ी वो नहीं है, उनका जो अचीवमेंट अगर वे अपने फील्ड में जाके वो कर लेंगे
4: जी,
5: वो हमारे फील्ड में नहीं कर सकते।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये रेडियो तेरना का या जो प्लेस है यहाँ पे तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लेस है और आपकी पढ़ाई यहाँ पे हो गई है, आपने यहाँ पे कॉलेज किया है, तो मुझे उस जमाने का याद आता है, तो इश्क मोहब्बत प्यार और ये जो फिल्म म्यूजिक है गीतों का भी आपको शौक था, तो ऐसा कुछ उस जमाने का मतलब है याद आपको कि कुछ गाने याद आ रहे हैं, ऐसा कुछ फर्स्ट इंप्रेशन है कुछ?
5: भाई देखो, हम तो जोशी सर के चेले रहे।
4: अच्छा,
5: एनके जोशी बड़े अच्छे गाना गाते थे।
4: प्रोडक्शन में तो ऐसे भी लड़कियां नहीं होंगी उस वक्त?
5: नहीं, प्रोडक्शन में तीन लड़कियां थे।
4: अच्छा, थे
5: एक हमारी बैचमेट थी अंजू गुप्ता, एक शिवानी ठाकुर थी, एक प्रगति कोलगे थी।
4: अच्छा,
5: प्रगति जी आजकल अब्रॉड है,
4: अमेरिका में है,
5: और अंजू गुप्ता जी अमृतसर में है, शिवानी ठाकुर गुड़गांव में।
4: अच्छा,
5: वे टच में हमारे, ऐसी बात थी। हम देखो इश्क प्यार मोहब्बत कभी मतलब कृष्ण भगवान के तम टाइम से चल रहा है तो इस चीज से आप बच नहीं सकते।
4: अच्छा अच्छा,
5: पर यह है कि भाई आदमी को फिर भी अपने एम को इससे मिक्सअप नहीं करना चाहिए।
4: नहीं करना चाहिए, बराबर, बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो गाने कुछ याद में आ रहे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे पहले कदम रखा कॉलेज में, तो एक अटैचमेंट रहता ना कोई सॉन्ग की, तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है।
5: दो लाइनें सुनाऊं?
4: जी जी, अरे बिल्कुल वेलकम।
5: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल है तू सताती, तेरे ही सपने ले

0: क्या बात है, उस वक्त तो आप 1992 का मुझे या 93 का ऐसा जमाना याद आ रहा है जब ये गाने सुनाते होंगे तो बस छाए होंगे उस वक्त कॉलेज में।
1: नहीं, मेरे से अच्छे से गाने वाले थे। अच्छा, पर ये तो हम ठीक है, फिर भी हम प्ले करते थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बहुत सही गाना आपने कहा, लेकिन मुझे क्या लगा था कि 1990 का जमाना था तो जैसे QSQT, कायम से कायमत, काशिकी, ये सब जमाना चल रहा था, लेकिन
1: तो वो हर आदमी की अपनी चॉइस होती है।
0: अच्छा,
1: हमें किशोर कुमार पसंद थे।
0: अच्छा,
1: आजकल जो बच्चे उन्हें अलग सिंगर
0: पसंद। तर मित्रांनो, खरं तर आपण श्री दीपक जी जैन यांच्याशी ही सर्व चर्चा करत असताना आपले 20-25 मिनिटं कशी निघून जात आहेत हे लक्षात येत नाही आहेत, आणि ते मूळतः दिल्लीमधले राहणारे आहेत, त्यामुळे दिल्लीचे लोक दिलवाले असतात आणि त्यांच्या बोलण्यातून आपल्याला ते जाणवलं असेल, आणि त्यांच्याकडून ज्या हलक्या फुलक्या गोष्टी आपल्याला कानावर पडलेल्या आहेत त्याच्या माध्यमातून निश्चितच आपल्याला खूप चांगली प्रेरणा भेटणार आहे। और सर जी, मैं ये भी आपसे एक पूछना चाहूंगा कि आपके जैसे APS हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट अगर कुछ पढ़ के आपसे आपके कंपनी से कुछ कांटेक्ट या गाइडेंस लेना चाहेंगे तो
1: प्लीज प्लीज वेलकम टू ऑल स्टूडेंट जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अच्छा, हम उन्हें कोऑपरेट करें।
0: अच्छा, तो दीपक जैन जी, मैं आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे की और हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप एक दिल्ली में रह के आपकी खुद की कंपनी भी चला रहे हो और इस तेना इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। श्रोतेव, रेडिओ तेना ट्यून करा 90.4 वर, किंवा आपण जर अँड्रॉइड फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअरवर, आयफोन वापरत असाल तर ॲप स्टोअरवर रेडिओ तेना उपलब्ध आहे। रेडिओ गार्डनवरही आपल्याला रेडिओ तेना ऐकता येईल, त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानाबादला जर आपण टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेना, किंवा आपण www.radio.coeusmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन हे ऐकू शकता रेडिओ तेरणा। आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा, त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970500900, मोबाईल क्रमांक पुन्हा एकदा 9970500900। आपण ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।

0: ऐ मेरी हमरा, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन

0: You're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

आंख उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर। दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा।

0: पक्कला धरा पक्कला वा दोरा सोडू नका गामा तत मिला पाई का
1: तारे तार जरा आई का
2: बोला बजरंगा ची कमाल हमाल
3: दे धमाल
2: हमाल
3: दे धमाल
2: हमाल
3: हमाल
2: हमाल
3: हमाल
0: दूर तरह वाट कर समाल।

0: पोटा मध्य घास तैयार धंजाला करा हो हुकुम बन जाला बंदा
1: तैयार धंजाला करा हो हुकुम बन जाला
0: मगे हमाली बोली होती आधे लिची नोट दोनों रुपया थट्टा हाय गरीबाची क्या परी देव नका पैका बोला बजरंगाची कमाल हमाल
1: हमाल
0: हमाल
1: हमाल
0: हमाल
1: हमाल
0: हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल

0: डगबिगा उतला डोई वरसा मन तड़ोंगर बरतला तैयार धंध्याला करा हो हुकुम बंध्याला हे बंदा
1: तैयार धंध्याला करा हो हुकुम बंध्याला
0: दादा थोड़ा सामान अच्छी चिंता थोड़ा बस टैक्सी रिक्शा टांगा कुत्ता तक लोग संगा चमचू न दादा पैका।

0: प्रशांत जैन है और मेरी टीम है, मतलब दिगंबर दाते सर हो गए, गलके सर हो गए और कोडले सर हो गए, सब ये मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। मतलब
1: दीपक जी, जैसे कि आप कह रहे हो कि 1996 के बाद आप पहली बार यहाँ पे तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज पे आ रहे हो
0: जी,
1: तो लगभग 27 इयर्स का बीच में टाइम पीरियड निकल के गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप जैसे यहाँ पे आपने कदम रखा तो आपको क्या फीलिंग थी पहले जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने कदम रखा?
0: फीलिंग तो ये थी कि हम अपनी सारी पुरानी मेमोरी हमने रिवाइज की है।
1: अच्छा।
0: कि भाई हम किस तरह हमने यहाँ पे सर्वाइव, उस टाइम बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन थी स्कूल की, कॉलेज की।
1: अच्छा।
0: पर अब यह है कि काफी इन्होंने पहले से बेहतर किया है। हम तो जब हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में जाते थे तो पूरा का पूरा नीचे घाटी वेव करके जाते थे। अब वहाँ पे पुल भी बन गया है, काफी अच्छी इम्प्लीमेंट हुई है, गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पे अच्छा वो कर दिया इन्होंने। तो पर यह है कि पहले से बेहतर है,
1: पहले से बेहतर है, टर्फ ग्राउंड भी हो गया है,
0: हाँ,
1: साथ में रेडियो तैरना भी आ गया।
0: रेडियो तैरना भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस।
1: थैंक यू सर। तो ये जैसे कि आप 1996 में यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए थे, आप 1996 में पास आउट हो गए, यानी उसके पहले चार साल पहले, यानी 1992 की बात होगी
0: जी।
1: तो आपको कैसे पता चला कि तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज एक है बेहतर कॉलेज है, या आपको दिल्ली से लेके डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन के लिए आना पड़ेगा?
0: एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे विक्रम गुप्ता जी,
1: जी
0: वे बेसिकली सीतापुर से वो बिलोंग करते थे, मतलब हमारी बुआ जी के बेटे राजीव जैन जी के फ्रेंड थे वे
1: जी।
0: तो उन्होंने ही हमें गाइड किया कि भाई ये कॉलेज है, यहाँ पे अच्छी फैकल्टी है और आप यहाँ से जुड़िए।
1: अच्छा।
0: तो उनके ही कहने पे हम यहाँ पे तेरणा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े और हमने अच्छा यहाँ पे बूस्टअप लिया।
1: अच्छा। तो जैसे आप 1992 में यहाँ पे आए थे और आपको जब पहली बार यहाँ पे देखे, क्योंकि आप तो, आपकी तो पढ़ाई पूरी दिल्ली में हो गई थी, आप दिल्ली में रहते थे, तो यहाँ उस्मानाबाद उस वक्त का, आज का धाराशिव है लेकिन उस वक्त उस्मान था, तो आपको यहाँ पे आने के बाद कैसे फील हो गया पहले?
0: पहले तो
1: फर्स्ट इम्प्रेशन,
0: पहले तो बहुत होम सिकनेस महसूस हुई क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज भी अलग थी, रहन सहन भी अलग था। तो पर यह है कि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया कि भाई किस तरह से इस क्लाइमेट में हम एडजस्ट हो, तो उनके सहयोग से हमने अपने आप को चेंज करके इस परिस्थिति में ढाला।
1: अच्छा। तो ये जो आपका चार साल का एकेडमिक्स था वो कैसे था यहाँ पे, आपको यहाँ की पढ़ाई होगी तो ये आपने कैसे यहाँ पे पूरी की फिर?
0: मतलब हमारी जो फैकल्टी थी उन्होंने हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है, उनके गाइडेंस में हमने अपने चार साल बड़े अच्छे निकाले। उस टाइम एसवी पाटिल सर थे।
1: अच्छा।
0: कुलकर्णी सर थे, सुरवासे सर थे, तो इन लोगों का हमें बड़ा अच्छा सहयोग मिला, तो इनके गाइडेंस में हमने अपने अच्छे कैरियर को आगे बढ़ाया।
1: अच्छा अच्छा। तो जैसे दीपक जैन जी, आप 1996 में पास आउट होने के बाद फिर आपने आगे के फ्यूचर के प्लानिंग क्या थी आपकी, और कैसे आपने शुरुआत की पढ़ाई के बाद?
0: शुरुआत ये है कि बेसिकली तो हम टीचिंग लाइन में गए पहले
1: जी,
0: हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 3-4 साल पढ़ाया
1: दिल्ली में।
0: हाँ, दिल्ली में, अपने बड़ौत में।
1: बड़ौत में। अच्छा, ओके। हाँ।
0: तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पॉलिसी ला रखी थी, उन्होंने वैकेंसी नहीं दी। तो फिर हमने उस फील्ड को छोड़ दिया।
1: हाँ, हाँ।
0: फिर उसके बाद अपनी लाइन में घुसे।
1: अच्छा।
0: पहले हमने धीरे धीरे रेलवे के प्रोजेक्ट लिए।
1: अच्छा।
0: फिर उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करा, फिर हमें एनएच में घुस गया।
1: आपकी पूछते ही नहीं ये ऐसा कुछ?
0: ना ना ना नहीं नहीं, ये हमने बिल्कुल नई लाइन चुनी थी।
1: अच्छा अच्छा।
0: ये है कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले।
1: अच्छा अच्छा। तो ये आपकी जो कंपनी एपीएस हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में जानकारी दीजिए कि आप ये कंपनी आपकी कैसी है, आप इसको कैसे चलाते हो?
0: एक्चुअली हम लोग जो ये कंपनी रन करते हैं, इसमें हम बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और एनएच ये नेशनल हाईवे बनाते हैं
1: जी।
0: हमारी 9 साइट तो ऑल ओवर इंडिया चल रही है जी, और 3-4 प्रोजेक्ट हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चल रहे हैं। हमारे ऑफिस में 47 तो स्टाफ हेड ऑफिस में है।
1: अच्छा।
0: 5000 स्टाफ साइट पे है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ये कि अपना सबके सहयोग से ठीक चल रहा है।
1: अच्छा। तो जैसे कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज, तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज में आपकी पढ़ाई करते थे, उसके बाद में आपने पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाने का काम किया, तो ऐसा कुछ आपका एम था खुद की कंपनी चलाने का या कुछ ऐसा आपने डिसाइड?
0: बिल्कुल सर, शुरू से एम था कि अपना फील्ड में।
1: नहीं, ये कब से एम था, यानी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारा ये जो आपका इंटरव्यू है सिर्फ स्टूडेंट ही सुनेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट भी सुनेंगे क्योंकि पूरे।
0: एम तो सर देखो, हमारे बेसिकली जो मेन संजीव बालियान जी हैं, ललित मोहन जी हैं, देवेंद्र जी हैं, इन लोगों ने शुरुआत की थी
1: जी।
0: फिर मैं तो धीरे धीरे इनके साथ जुड़ा हूँ, इन लोगों के साथ सहयोग करके धीरे धीरे इस कंपनी को रन किया।
1: मैं ये इसलिए पूछना चाह

0: आता था, क्योंकि जो पढ़ाई करते स्टूडेंट जो अब स्कूलिंग से लेके कॉलेज में आते हैं, फिर यहाँ का हमारा तो एक ऐसा माहौल है कि पूरी पढ़ाई होने के बाद बच्चे सोचते हैं कुछ कुछ कि आगे लाइफ में क्या करना है। तो आप इसके बारे में क्या ऐसा गाइडेंस देना चाहेंगे कि हमारा एम और हमारा विजन कैसे क्लियर रहना चाहिए?
1: संजो ये क्या होता है, आपको एम और विजन में डिफरेंस लाना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: एम होता है कि भाई आपने सोच लिया मुझे ये करना है
0: जी।
1: विजन ये होता है कि आप पहले से सोच के चल रहे हो कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूंगा।
0: इस फील्ड में आगे बढ़ना है, ठीक है।
1: तो हमने दोनों को मिक्सअप नहीं करा।
0: अच्छा,
1: हमने अपना गोल अलग रखा हमें कि भाई धीरे धीरे इस फील्ड को आगे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: जो अपना गोल पे कंसंट्रेट करेगा वो धीरे धीरे उस फील्ड में निकल जाएगा।
0: इसको कब सोचना चाहिए ये मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप 1996 में तो आपने पढ़ाई की थी, लेकिन आज
1: समझो ये क्या होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सीधे ही आप ये एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाए।
0: अच्छा,
1: शुरू में आप फील्ड में आप अपना सर्विस ज्वाइन कीजिए जो आप जिस चीज में इंटरेस्ट है, उससे आपको मार्केट एक्सपोजर बहुत मिलता है। जब आपको मार्केट एक्सपोजर मार्केट का पता चल जाएगा फिर धीरे धीरे आप उस फील्ड में घुसिए।
0: अच्छा अच्छा, यानी डायरेक्टली सिर्फ कंपनी
1: डायरेक्टली कभी भी कंपनी वो नहीं करनी चाहिए रन, उसमें आपको नुकसान बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज का फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो आपको पहले मार्केट एक्सपोजर के लिए फील्ड में जॉब जरूर करनी चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, यानी आपको एक्सपीरियंस आ जाए उस चीज
1: उससे, उसके बाद आप आगे बढ़िए।
0: अच्छा अच्छा, तो जब आप दिल्ली में आपने कंपनी स्टार्ट की थी आपकी, तो ये कंपनी स्टार्ट करने में आपको पहले क्या दिक्कतें आ गई? आज तो इसका बहुत बड़ा स्वरूप दिखता है, लेकिन आपको पहले पहले क्या दिक्कतें आ गई और आपने उसको कैसे फेस किया?
1: दिक्कतें तो देखो हर लाइन में आती है सुजो, ये है कि भाई आपको दिक्कतों को साइड में रख के भाई उन दिक्कतों को भी आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप दिक्कतें फेस नहीं करोगे उसका तरीका नहीं निकालोगे भाई इस चीज से कैसे हम आगे बढ़ना है, तो आगे आप अपने गोल को नहीं अचीव कर सकते।
0: बराबर है।
1: तो इसलिए दिक्कतें आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए दिक्कतें आएंगी, वो उसका दिक्कतों का स्वरूप अलग अलग होता है। अब वो स्वरूप मैं आपको कैसे डिफाइन करूं वो
0: ठीक है, लेकिन दिक्कतें तो आती है इसके बाद
1: हर फील्ड में आती है। वो तो ये है कि भाई आपको फेस करना पड़ेगा उन दिक्कतों को, किस तरह आप दूर करना है वो आपकी ये है कि भाई किस तरह आपने अपना विजन देखा है, किस तरह आपने अपना गोल देखा है, वो ही आपको उस चीज को दूर करने का तरीका बताता है।
0: अच्छा, तो जैसे कि ये दिक्कतें दूर करने के लिए या कोई भी चीज जैसे आती है तो उसको फेसिंग करने के लिए जो तैयारी होती है वो स्कूलिंग के और कॉलेज के पीरियड में होती है, जो भी हमको एजुकेशन मिलता है। तो आपका जो स्कूलिंग का एजुकेशन था वो कैसा था, कॉलेज में आने के बाद भी आपका एजुकेशन कैसा रहा, और आपको क्या ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जिसके ऊपर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे
1: हैं? क्या होता है, हम जो पढ़े हुए हैं यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं
0: जी,
1: हमारा बेसिक जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत ही साउंड था।
0: अच्छा, अच्छा।
1: हम लोग जब यहाँ से यूपी से महाराष्ट्र में आए थोड़ा हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तो हल्का था, पर हम लोग बेसिक अब अपना बहुत क्लियर करके आए थे।
0: अच्छा,
1: तो हमें यहाँ पे कोई वैसी दिक्कत नहीं आई। एटमोसफेयर में ढलने में, क्लाइमेट एब्जॉर्ब वो करने में हमें थोड़ा टाइम तो लगा है, पर ये है कि 6 महीने के अंदर हमने उस चीज को अपने आप अडॉप्ट कर लिया था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उस एनवायरनमेंट से निकल के इस एनवायरनमेंट में आओ, वो तो बच्चे की है कि भाई माइंड पावर कैसी है, उससे अपने ऊपर विल पावर कितनी मजबूत है। जिसकी विल पावर मजबूत होगी वो उस चीज को फेस कर लेगा।
0: अच्छा अच्छा, श्रोतेओ आणि मित्रांनो, आपण जी चर्चा करत आहोत श्री दीपक जैन यांच्याशी, ते मूळता राहणारे बरोट येथील आहेत, दिल्लीच्या जवळचा आहे, कदाचित माझ्या उच्चारामध्ये कमी जास्त असेल, दीपक जैन सरांच्या माध्यमातून आपल्याला ते समजून येत असेल। आणि ते आता सध्या दिल्लीमध्ये APS हायड्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या नावानं कंपनी चालवतात। जैसे दीपक जी, आपने 1996 में यहां से पास आउट किया था, उसके बाद में कुछ दिन आपने स्टूडेंट को पढ़ाया भी है, और आप खुद की कंपनी भी चला रहे हो, ताकि आपके एम्प्लॉयज में बहुत सारे इंजीनियर भी हो सकते। ओवरऑल ये सबको अगर आप समराइज करेंगे, देखेंगे इसको, तो आप क्या कहना चाहोगे कि उस वक्त की पढ़ाई, उसका जो भी सिनेरियो था इंजीनियरिंग का, आज का इंजीनियरिंग का सिनेरियो कैसा है, ताकि जो भी इंजीनियरिंग में अभी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट उनके लिए कुछ तो गाइडलाइंस मिल सके?
1: देखो सिनेरियो तो उस टाइम और इस टाइम में ज्यादा फर्क नहीं है, पर ये है कि जो स्टूडेंट है उन्हें अपना विजन क्लियर कर चलना पड़े, अपना बेसिक जितना वे लोग अपनी मेहनत बेसिक्स पे करेंगे वो उस चीज को ये है कि अपना फ्यूचर उतना ही अच्छा निकालेंगे। तो अपना बेसिक मजबूत करेंगे चले स्टूडेंट, मेरी तो यही तमन्ना है, बेसिक अच्छा होना चाहिए,
0: बेसिक अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये जो स्टूडेंट है अभी के, क्योंकि उनके अंदर एक और एक चेंज आ गया है जो कि आपको भी शायद दिखाई देता है, रोज के लिए, कि जैसे कि आप 1996 के दौरान जब पढ़ाई करते थे तो आपके पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा नहीं थी जैसे कि मोबाइल हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, लेकिन अभी आजकल बहुत ये हाथ में है, तो उसका यूज और मिसयूज ये दोनों भी हो जाता है। तो आप आज के जनरेशन को क्या कहना चाहोगे कि टेक्नोलॉजी के बारे में हमने कैसे साउंड रहना चाहिए?
1: देखो, टेक्नोलॉजी के मामले में स्टूडेंट को सीधे ही पॉजिटिव व्यू चीज लेना पड़ेगा। अच्छा। जो स्टूडेंट नेगेटिव सोच के चलेगा वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट अपना गोल और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएगा वो अपना गोल भी पार करेगा और अपना फ्यूचर भी बेहतर लाएगा।
0: अच्छा, तो ये जो आजकल के स्टूडेंट है जिनके बारे में आप कह रहे हो कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में साउंड रहना चाहिए, उसका अच्छे तरीके से यूज करना,
1: पॉजिटिविटी होनी चाहिए,
0: पॉजिटिव होने चाहिए। तो जैसे कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली में कौन है, और जब यहाँ पे आप उस में पढ़ाई के लिए आए थे उस दौर में, तो आपके फैमिली का क्या कहना था, आपके पिताजी होंगे माताजी होंगे तो उनका क्या कहना था, और आज जब आपकी कुछ खुद फैमिली है तो आप आपके बच्चों को क्या कहते हो?
1: देखिए, मेरे जो दादाजी थे वे IIT रुड़की से पास आउट थे।
0: अरे वाह।
1: वे एज ए डिविजनल इंजीनियर रिटायर हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: हाँ। मेरे चाचा जी भी IIT रुड़की से टॉपर है।
0: अरे वाह। हाँ।
1: तो वे महिंद्रा इन महिंद्रा में जनरल सेल्स मैनेजर रहे, फिर 2007 में उन्होंने अपनी कंपनी रन करनी शुरू करी थी।
0: अच्छा, अच्छा।
1: नमो कार इलेक्ट्रिकल्स के नाम से उनकी कंपनी है।
0: अच्छा।
1: तो हम तो उनसे ही इंस्पायर हुए।
0: अच्छा।
1: अपने बड़ों से अच्छी शिक्षा लेके आदमी को बढ़ना चाहिए। देखो, हम अपने बच्चों से यही कहेंगे कि जो हमने अचीव किया है आप भी कोशिश कीजिएगा उस एम तक पहुंचे।
0: जी जी।
1: तो हम तो उनके लिए गुड लक बोलेंगे, फ्यूचर आपका अच्छा है, आप पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़िए।
0: अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लाना चाहूंगा फिर से एक बार। आपने 1992 में यहाँ पे एडमिशन लिया था
1: जी,
0: तो वहाँ पे आप काफी ऐसे ब्राइट स्टूडेंट थे, शाय स्टूडेंट थे, या कुछ मौज मजा मस्ती भी करते थे?
1: हम तो मौज मजा मस्ती वाले थे।
0: अच्छा, अच्छा।
1: हम तो मौज मजा मस्ती वाले थे।
0: अच्छा। हाँ।
1: खूब 4 साल हमने बड़े एंजॉय किया इस लाइफ को।
0: अच्छा।
1: स्टूडेंट को मैं ये सलाह दूंगा जिसने हॉस्टल लाइफ नहीं जी, उसने अपना कुछ नहीं जिया।
0: अच्छा।
1: हॉस्टल लाइफ, जब आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करो।
0: अच्छा, तो क्या क्या था उस जमाने का आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत ताजा हो रहा है आपके दिमाग में कि नहीं, मैं उस वक्त ये करता था या कुछ ऐसा?
1: भाई देखो, ज्यादा तो उस टाइम मौके थे नहीं।
0: हाँ।
1: पर हम अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते थे।
0: अच्छा। हाँ।
1: हमारे लिए यहाँ पे कि वो था सिद्धार्थ होटल।
0: अच्छा।
1: जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता था या जो भी हम अचीवमेंट करते थे वो सेलिब्रेट हमारा वही होता था।
0: अच्छा, तो फिल्में देखना होगा या बाकी कुछ चीजें होंगी?
1: नहीं,
0: तो
1: फिल्में भी देखी, हमने क्रिकेट बहुत खेला है।
0: अच्छा।
1: चेस बहुत खेलते थे।
0: अच्छा।
1: बैडमिंटन का मैं अच्छा प्लेयर था।
0: अच्छा।
1: एनके जोशी हमारे और थे इंस्ट्रक्टर।
0: अच्छा।
1: और थोड़ा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था।
0: अच्छा,
1: तो अच्छा अच्छा जीवन रहा है।
0: अच्छा, आपके साथ उस वक्त पढ़ाई के लिए यहाँ पे एडमिशन लेके उस टाइम इंजीनियरिंग में आपके साथ कहाँ कहाँ के स्टूडेंट थे?
1: बेसिकली हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आते थे दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से।
0: अच्छा।
1: हिमाचल से। उस टाइम लोकल स्टूडेंट्स कम थे।
0: अच्छा।
1: अदर स्टेट के ज्यादा थे।
0: अच्छा।
1: तो क्योंकि उन दिनों हमारी तरफ, मतलब 2000 से पहले, वहाँ पे इंजीनियरिंग और MBBS कॉलेज नहीं थे।
0: अच्छा।
1: तो जितना भी स्टूडेंट को ये टेक्निकल नॉलेज या ये MBBS में जाना होता तो महाराष्ट्र कर्नाटक ही प्रेफर करता था।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो ये है कि भाई यहाँ एनवायरनमेंट अलग है, पर यहाँ पे ये है कि भाई एनवायरनमेंट अलग होने के बाद भी जो हमारे सीनियर्स थे या हमारे प्रोफेसर थे वे बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो उनके सहयोग से आदमी अपनी लाइफ सर्वाइव कर जाता था।
0: अच्छा, अच्छा। दीपक जैन जी, मैं तो सही बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप 5000 एम्प्लॉय की एक कंपनी रन करते हो।
1: जी जी।
0: तो ये कैसे फीलिंग होता है कि, तो आपकी एक परंपरा थी कि आपके घर में IIT से भी कुछ लोग होके मतलब उन्होंने कंपनी रन की थी, लेकिन फिर भी आप एक उस्मान जैसे एक सिटी में पढ़ के आपने आज दिल्ली जैसे राजधानी में, देश के राजधानी में एक 5000 एम्प्लॉय रहने वाली कंपनी चला रहे हो, तो आपको क्या फील होता है कि एक कंपनी ऐसे चलाना? और
1: देखो सुजय, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि कंपनी चलाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आदमी को अपनी जमीन की जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए।
0: अच्छा।
1: जो आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा उस पे वो हमेशा ही अचीवमेंट निकालेगा।
0: अच्छा।
1: जो आदमी अपनी जड़ों को खो देता है तो वो सब कुछ खो देता है।
0: अच्छा। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था आपसे क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे 13 एल्युमिनिस के इंटरव्यूज किए पिछले साल में, लगभग 350 एल्युमिनिस के मैंने इंटरव्यूज किए हैं, जिसके अंदर 1986 के बैच के भी कुछ स्टूडेंट थे और अभी रिसेंटली भी थे। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो कहीं अब्रॉड में भी काम करते हैं, कहीं कंपनी में अच्छे अच्छे अहदे पे काम करते हैं, लेकिन खुद की कंपनी चलाने वाले एक ही दो थे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जो इतने सारे एम्प्लॉय के साथ चलाने वाले वैसे तो आप ही।
1: हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत हमारे जो बैचमेट थे संजीव जी या ललित जी ने करी।
0: अच्छा,
1: मैं तो बाद में उन लोगों का साथ जुड़ने के लिए जुड़ा हूँ।
0: अच्छा,
1: मेन मैं उन्हें थैंकफुल कहूंगा, दोनों ने बड़ा अच्छा, देवेंद्र संजीव ने बड़ा अच्छा सेटअप किया
0: बैचमेंट।
1: अच्छा। इन लोगों ने बड़ा अच्छा सेटअप तैयार करा।
0: अच्छा,
1: ये है कि भाई अब हम प्राउड फील करते हैं कि हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि भाई हम कह सकते हैं हम सीओ उस्मानाबाद से पढ़े हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो अच्छा महसूस होता है।
0: अच्छा महसूस होता है। अच्छा, फाइनल वर्ड्स ऐसा क्या कहना चाहोगे कि एक सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए क्या करना चाहिए किसी ने भी, आमतौर पर सिर्फ पढ़ाई करने वाले ही स्टूडेंट नहीं, सिर्फ इंजीनियर
1: पढ़ना और स्टडी में ज्यादा इन्वॉल्व होना कोई वो एम नहीं होना, आपको अपने आप में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी
0: जी।
1: जो मतलब आपका थॉट है और जो गोल है वो दोनों एक ही उसमें लाइन अप होना चाहिए। आप अगर उस चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत आगे
0: बढ़ सकते हैं। अच्छा, और फैमिली वैल्यूज को आप कितना
1: वो सबसे प्रायोरिटी है। अच्छा। फैमिली वैल्यू सबसे ज्यादा प्रायोरिटी।
0: तो आपकी फैमिली अभी कौन कौन है?
1: मेरी मिसेज हैं
0: जी,
1: मेरे दो बेटे हैं।
0: अच्छा,
1: और मम्मी पापा हैं, दोनों मास्टर डिग्री कर रहे हैं।
0: मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में?
1: नहीं नहीं।
0: अच्छा, ऐसे
1: वे बीबीए करने के बाद एक तो एलएलबी कर रहा है, एक बीबीए करने के बाद एमबीए कर रहा है।
0: तो आपने उनको नहीं कहा कि एक इंजीनियरिंग की लेजेंडरी आपके पीछे तो आगे चलिए वही लेके?
1: सुजय, आजकल बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकता, वो बच्चों का एम और गोल बिल्कुल क्लियर है।
0: अच्छा,
1: जो उस फील्ड में जाना चाहते हम लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: इंजीनियरिंग एक बड़ी वो नहीं है, उनका जो अचीवमेंट अगर वे अपने फील्ड में जाके वो कर लेंगे
0: जी,
1: वो हमारे फील्ड में नहीं कर सकते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे कि ये प्लेटफॉर्म जो है, ये रेडियो तेरना का या जो प्लेस है यहाँ पे, तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लेस है और आपकी पढ़ाई यहाँ पे हो गई है, आपने यहाँ पे कॉलेज किया है, तो मुझे उस जमाने का याद आता है, तो इश्क मोहब्बत प्यार और ये जो फिल्म म्यूजिक है, गीतों का भी आपको शौक था, तो ऐसा कुछ उस जमाने का मतलब है याद आपको कि कुछ गाने याद आ रहे हैं, ऐसा कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन है कुछ?
1: भाई देखो, हम तो जोशी सर के चेले रहे।
0: अच्छा,
1: एन के जोशी बड़े अच्छे गाना गाते थे।
0: प्रोडक्शन में तो ऐसे भी लड़कियां नहीं होंगी उस वक्त?
1: नहीं, प्रोडक्शन में तीन लड़कियां थे।
0: अच्छा, थे।
1: एक हमारी बैचमेट थी अंजू गुप्ता, एक शिवानी ठाकुर थी, एक प्रगति कोलगे थी।
0: अच्छा,
1: प्रगति जी आजकल अब्रॉड है, अमेरिका में है, और अंजू गुप्ता जी अमृतसर में है, शिवानी ठाकुर गुड़गांव में।
0: अच्छा,
1: वे टच में हमारे, ऐसी बात थी। हम देखो, इश्क प्यार मोहब्बत कभी लोग कृष्ण भगवान के तम टाइम से चल रहे तो इस चीज से आप बच नहीं सकते।
0: अच्छा अच्छा,
1: पर यह है कि भाई आदमी को फिर भी अपने एम को इससे मिक्सअप नहीं करना चाहिए।
0: नहीं करना चाहिए, बराबर, बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो गाने कुछ याद में आ रहे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे पहले कदम रखा कॉलेज में, तो एक अटैचमेंट रहता ना कोई सॉन्ग की, तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है।
1: दो लाइनें सुनाऊं?
0: जी जी, अरे बिल्कुल, वेलकम।
1: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल है तू सताती, तेरे ही सपने ले

0: क्या बात है। उस वक्त तो आप 1992 का मुझे या 93 का ऐसा जमाना याद आ रहा है जब ये गाने सुनाते होंगे तो बस छाए होंगे उस वक्त कॉलेज में।
1: नहीं, मेरे से अच्छे से गाने वाले थे। पर ये तो हम ठीक है, फिर भी हम प्ले करते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बहुत सही गाना आपने कहा, लेकिन मुझे क्या लगा था कि 1990 का जमाना था तो जैसे QSQT, कायम से कायमत, काशिकी, ये सब जमाना चल रहा था।
1: लेकिन तो वो हर आदमी की अपनी चॉइस होती है।
0: अच्छा,
1: हमें किशोर कुमार पसंद थे।
0: अच्छा,
1: आजकल जो बच्चे उन्हें अलग अलग कर
0: पसंद। तर मित्रांनो, खरं तर आपण श्री दीपक जी जैन यांच्याशी ही सर्व चर्चा करत असताना आपले 20-25 मिनिटं कशी निघून जातात हे लक्षात येत नाही आहेत। आणि ते मूळतः दिल्लीमधले राहणारे आहेत, त्यामुळे दिल्लीचे लोक दिलवाले असतात आणि त्यांच्या बोलण्यातून आपल्याला ते जाणवलं असेल। आणि त्यांच्याकडून ज्या हलक्या फुलक्या गोष्टी आपल्याला कानावर पडलेल्या आहेत त्याच्या माध्यमातून निश्चितच आपल्याला खूप चांगली प्रेरणा भेटणार आहे। और सर जी, मैं ये भी आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आपके जैसे APS हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट अगर कुछ पढ़ के आपसे आपके कंपनी से कुछ कांटेक्ट या गाइडेंस लेना चाहेंगे तो
1: प्लीज वेलकम टू ऑल स्टूडेंट जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अच्छा, हम उन्हें कोऑपरेट करें।
0: अच्छा, तो दीपक जैन जी, मैं आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे की और हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप एक दिल्ली में रह के आपकी खुद की कंपनी भी चला रहे हो और इस तेना इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। श्रोतेवर रेडिओ तेना ट्यून करा 90.4 वर, किंवा आपण जर अँड्रॉइड फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअरवर, आयफोन वापरत असाल तर ॲप स्टोअरवर रेडिओ तेना उपलब्ध आहे। रेडिओ गार्डनवरही आपल्याला रेडिओ तेना ऐकता येईल। त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानाबादला जर आपण टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेना, किंवा आपण www.radio.coeusmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊनही ऐकू शकता रेडिओ तेना। आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा। त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970500900, मोबाईल क्रमांक पुन्हा एकदा 9970500900। आपण ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।

0: ऐका ना, तुम्ही पीएम सूर्यघर मोफत बिजली योजनेबद्दल ऐकलंय का?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: यामुळे तुमचं घर सूर्यघर बनतं, म्हणजे वीज बिल शून्य। आणि जास्तीची वीज तयार झाली तर ग्रिडला विकून पैसेही कमवू शकता। मग बसलात काय, आताच रजिस्टर करा pmsuryaghar.gov.in वर।
2: हर घर सूर्यघर।
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम दे जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

सच गया बहुत हवा में था, यारों में बाजी मार गया, मेरी जीत हुई ये हार गया, मेरी जीत हुई ये हार गया, मेरी जीत हुई ये हार।

0: होली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात,
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर थी।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।